0: मुकर पाए
1: केते मूर्ख काहे काहे
0: केतिया दुपुक सदमा
1: एबे दातरी दातार
0: अंधकलासी बाने होए
1: और आक ना सके कोए
0: जे को कहे अकन पाए
1: ओ जाने चित्य मोहे खाए
0: आपे जाने आपे दे
1: आके से बिखे के
0: जिसनो बख्शे सुफत सला
1: नानक पाचा।